0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी, उसके पीछे एक वजह है। खास वजह ये है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मूवमेंट कम होता है और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूं। और बहुत अच्छी टैलेंटेड रेसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड।
0: ओह रियली नाइस, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?
1: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है, लॉ ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को, लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मींस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
0: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आएं, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
1: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते हैं तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
0: ओह ग्रेट ग्रेट। कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है, तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
1: बहुत खुशी मिलती थी जब हम लोग जीत कर आते थे, तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ, मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है, नाम है, तो जस्ट वो खुशी बहुत अनबिलीवेबल होती है,
0: बयान नहीं किया जा सकता।
1: एग्जैक्टली, और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए।
0: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती, यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 एफएम। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट, ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ, और मेरे साथ आज खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लोग ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी, वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए, जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स के एक मीनिंग है, और खासकर जब उस पे म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है, तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ, तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है, या बिल्कुल खराब है।
0: इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: हाँ जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड में आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो?

0: पाल कर रखे हैं, अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग ही चल रहे हैं।
0: सॉरी मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों बातों में वो बात आएगी। अच्छा जी, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो हम आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, कभी कुछ होता है ऐसा?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। हाँ। आया दीदी मुझे मार दिया, मैंने क्या अभी बताती हूँ, उसको बड़ा मार किया।
0: अच्छा, literally, oh my God.
1: Exactly.
0: देखिए मैं पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश यही है कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें हम अपना 100% दें तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये लिस्टर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिस्टर्स, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत
0: सेम हियर सेम हियर, आई हाय मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बांकुरे जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही हैं, तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शादा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को, एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाई करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाई करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट द थिंग है, जो समाज का जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप मानती कि है जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो कल्चर आता है, आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदी होते चले जाते हैं, तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है, और उसका जो कारण है हम स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का, जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको, संस्कार।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं जाता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही हैं और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है, उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का, कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया। कि अगर हम सोचो, देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है। मतलब दिस एंड दैट, मोबाइल एक ऐसा हो गया कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस यस,
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टैक्स कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगे।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है. मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में, मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गाँव है. और सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. एंड सी, हमारा जो भारत है उसकी ज्यादातर जो
0: गांव में
1: बसते हैं,
0: right.
1: वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर. सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं. लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिक ऑन दैट. सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट. एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट.
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है. और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे. संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं. फाइनली, कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ. और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है. हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना, मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं, दैट इज की फॉर देम द फैशन. अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना मतलब भारत का
0: नाम
1: किया है, बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस.
0: Exactly.
1: But still there are the, this is the society. Society is like that, na, ki in small cities and all, the parents don't allow, ki nahi, abhi nahi, this is not for you, you go for that. So that should be stopped.
0: ओके, सो लिसनर्स, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं. कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें, उनका जो क्षेत्र है वो जो करना चाहते हैं उनको करने में आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे. सो ममता जी, आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई. आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे, सजा रहे. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878 93770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

0: क्या आपको बुखार आ रहा है?
1: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
0: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
1: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
0: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
1: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
0: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
1: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
0: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
1: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुरु शादा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: राम राम दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:05 हो चुके हैं, 6 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है जाने के जरूर, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
1: सूट काले रंग दा पाई जवान रूप सानते

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन गिसार। स्टूडियो की घड़ी में 9:08 हो चुके हैं। 6 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है आईएमडी के अनुसार। ये बात मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। मानसून राजधानी और आसपास के शहरों में कब दस्तक दे सकता है इसके बारे में भी अपडेट निकलकर हमारे सामने आ रही है, और जिससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन आज के मौसम की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर आज ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। सुनने में आ रहा है कि 25 से लेकर 30 जून के बीच दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में दस्तक दे सकता है मॉनसून, यानी कि रिमझिम रिमझिम बारिश के आसार। और बारिश का जब दौर शुरू होता है तो निश्चित तौर पर एक चेहरे पर खुशी आ जाती है। बारिश में भीगने का मन करता है, बारिश में नाचने का मन करता है, और बारिश में कभी कभी समोसे खाने का भी मन करता है। लेकिन आजकल क्या समोसे, मतलब साइज छोटा कर दिया, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सब महंगा हो गया। महंगाई की मार से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आमदनी अठन्नी अगर है तो खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों से दिक्कतें परेशानियों को हल किया जा सकता, समस्याओं का समाधान, हाँ समाधान ढूंढा जा सकता, शाबाश भी थे। और ट्रैफिक में अगर आप फंसे हैं तो अनावश्यक तौर पर हॉर्न ना बजाएगा, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और मौसम जब बारिश का आएगा तो एक पौधा माँ के नाम जरूर लगाइए, यानी कि उसकी शुरुआत कल पर्यावरण दिवस से हम सब ने कर दिए, तो एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएगा।
1: फुल ट्रैक ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम। 100 शर्त मंजूर सिंगर्स पलक मुच्छल एंड मोहम्मद इरफान, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी, Label Tips Official. So let's listen to it. Only on Surushada 90.8 FM. So.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

0: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सुनो शारदा 90.8 FM पर मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:19 हो चुके हैं, 6 तारीख है यानी कि 6 जून। वक्त हाथ से रीत की माफिक फिसलता चला जा रहा है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। कहने का मतलब ये कि भागदौड़ शुरू हो रही है, स्कूल से निकलकर कॉलेज की तरफ आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की तरफ आप जा रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक स्कूल देखना चाहते हैं, एक माहौल देखना चाहते हैं, पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियों को आप समझना चाहते हैं, प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं और भी बहुत कुछ। तो मैं कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आइए, यहाँ जब आप आएंगे तो एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को समझने को मिलेंगे और पढ़ने पढ़ाने की जो गतिविधियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, आपके बच्चे को कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा और स्पोर्ट्स तो है ही, है ना। चलिए, ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज न करेगा। 12 जून को एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है SSMFE की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी वर्कशॉप है। इसके बारे में आप गूगल के माध्यम से डिटेल ले सकते हैं और ईमेल आईडी और फोन जो नंबर है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं, कोशिश करता हूं कि जल्दी से वो निकल कर मेरे सामने आ जाए। तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तो उस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक दिन की वर्कशॉप रहेगी तो इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। बस कहना ये चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो मौके पर चौका ज़रूर मारिएगा और इस पार्टिसिपेशन का जो मौका है तो इसको बस छोड़िएगा मत। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे डिटेल में इस वर्कशॉप के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। पुरानी यादें ताजा करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं, 6 तारीख है, मौसम बदल रहा है। ऐसे समय में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा और पानी की कमी ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, यानी कि तरबूज खाइए, खरबूज खाइए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, प्रचुर हो वो वाले फ्रूट्स आप ज़रूर ले सकते हैं। और शिकंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको लस्सी भी कहते हैं कुछ लोग, लस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए लस्सी मीठी वाली लस्सी होती है, और हाँ कहीं कहीं लस्सी बोल देते हैं, छाछ बोल देते हैं, हमारे मच्छा में मच्छा बोलते हैं। हाँ, तो इस तरीके से पानी की कमी अपने शरीर के अंदर न होने दीजिएगा। हाँ, कभी कभी रोड पे पानी होता है, हाँ कभी कभी रोड पर पानी होता है, लेकिन बरसात से पहले शासन प्रशासन को कमर कसने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी शॉप के आगे, अगर आपके घर के आगे भी ऐसी स्थिति है तो वो जो नालियाँ हैं या जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति की वजह से हमें गड्ढे नज़र नहीं आते, दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं, जनधन की हानि होती रहती है। सो प्लीज़ अगर हम ख्याल रखेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले मानसून में कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे इस वक्त अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला चल रहा है, टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या है अपडेट, किसने टॉस जीता, कौन बल्लेबाजी कर रहा है, और हमारा जो स्क्वाड है यानी कि जो हमारी टीम है उस टीम में कौन कौन शामिल है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: ना बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: क्या बात है इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। अपने शहर का रेडियो स्टेशन है तो अपनी बातें तो होना लाजमी है, यानी कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जनाबे आली से प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए।
1: आई हैव वन क्वेश्चन,
0: बोलो
1: प्यार किसका होना चाहिए?
0: ये भी वैसे सही सवाल है, प्यार अपना ही होना चाहिए।
1: हाँ क्लियर कर दिया गगन ने, प्यार अपना ही होना चाहिए।
0: जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हुए वो प्यार आपका अपना ही होना चाहिए। अपनी फैमिली से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए। कल पर्यावरण दिवस हम सब ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सच बात तो ये कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ अगर कटते रहे तो दिक्कतें परेशानियां आज हैं। सर्वे हमें बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से हम जी रहे हैं, कितनी दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने हैं। पौधे ही हमें बचा सकते हैं। ऑक्सीजन की जो खास बातें थी, जो महत्व था कोरोना के समय में, हम सब ने देखा कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन ने ही हमें बचाया, यानी कि वो गैस सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूं। और साक्षात जो प्रकृति हमें ऑक्सीजन अगर देती है, वो शुद्ध अगर आपको

मिलती रहे। कल्पना करिए कि जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं और जो जमीन पर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो शुद्ध वातावरण में अपने आप को लेकर जाइए, है ना, खुश रहिए, अपने आप को, नेचर का ख्याल रखिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है SSMFE द्वारा, यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इसको आयोजित कर रहा है, AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी, और ये 12 जून को होगा, मोड होगा ऑनलाइन। डिटेल आप ले सकते हैं smfe.conference@sharda.ac.in पर। नंबर है 8855012300। इसके जरिए भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैच के बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

इस गाने में मैं इतना खो गया कि मैं वापस आना भूल गया। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज वाकई वाकई दिलों को सुकून देती है। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:50 हो चुके हैं, 6 तारीख है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि हमारे आसपास और क्या खास है, यानी कि क्रिकेट में क्या खास हो रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्रिकेट के आप दीवाने हैं और दीवाने इस वक्त हम सब हो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के। वैभव का जो सूर्य उदय हुआ है, निश्चित तौर पर वो देखते बनता है। और जो संस्कार हैं, अगर कोई बड़ा उनके सामने आ रहा है तो चरण स्पर्श करना, ये भारतीय संस्कृति की, भारतीय कल्चर की एक पहचान है। पैर दोनों हाथों से छूना, मस्तिष्क तक उसको लेकर जाना, यानी कि माथे तक उसको स्पर्श कराना। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि सामने वाले की जो सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क तक जा रही है, यानी कि जब आपने पैर छुआ उसके बाद माथे तक लगाया, तो वो एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति किसी के सामने झुकता है तो आपने भी अक्सर ये देखा है कि सामने वाला उसको गले से लगा लेता है। और जब ये दृश्य हम सब देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी बड़ी खुशी मिलती है। वैभव के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मैं बात करना चाहता हूं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट का। मुलालम पुर के महाराजा यागविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने, इस मैदान पर पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दोस्तों ये न्यू चंडीगढ़ में आयोजित होने जा रहा है और भारतीय टीम इस मुकाबले के जरिए नए टेस्ट सीजन का आगाज कर रही है। और पहले बैटिंग का निर्णय लिया गया है, ये टॉस भारतीय टीम ने जीता है, तो इस बात के लिए लखलख बधाई। और साथ ही साथ भारत की ओर से स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मानव सुथार का डेब्यू मुकाबला है। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इनके ऊपर होंगी, इनके फैमिली की भी निगाहें इनके ऊपर होंगी और खुद इनकी निगाहें अपने ऊपर होगी। मानव आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केएल राहुल यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे धुरंधर टीम में शामिल है, तो निश्चित तौर पर जगदेव फट्टे तो होना लाजमी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मैं रंग शरबत होगा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना सिंगर किशोर कुमार लता मंगेशकर लिरिसिस्ट आनंद बख्शी म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीप शिखा रैना म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर पन्ना।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं शशि कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, और इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में। और आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में, जहां पर हम बैठे हैं दीपक कौशिक जी के सामने। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ सेवाएं वो शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कौशिक जी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं सभी आपके श्रोतागण है सभी का धन्यवाद करता हूँ।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो शारदा हॉस्पिटल का डॉट सेंटर है, यहाँ पर आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या क्या कार्य आप यहाँ पर देखते हैं, और किस तरह से जो डॉट सेंटर है वो लोगों की सेवा कर रहा है।
1: सर, मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं बेसिकली यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, और शारदा हम विजिट के लिए यहाँ आते हैं, डॉट सेंटर को रन कर रहे हैं क्योंकि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के यहाँ डॉट सेंटर चलता है। विगत 2011 से हम लोग यहाँ पे हैं, जो डॉट सेंटर को हम लोग चला रहे हैं, और इन 2011 से हमने कई हजार मरीज जो टीबी से ग्रसित थे उनको हमने ठीक किया है। और देखा जाए तो टीबी एक जो पहली सदी में एक महामारी के रूप में जानी जाती थी, लोग उसको लाइलाज बीमारी के रूप में बताते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉट्स आया, पहले हमने RNTCP से स्टार्ट की, RNTCP के बाद में हमने इसको अब NTP में ला के आए, अब एलिमिनेट की तरफ हमने इसको प्रोग्राम को चलाया हुआ है। तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य विजन रखा है कि हमें अपने देश से टीवी को जड़ से भगाना है, टीवी फ्री इंडिया करना है। तो इसी मुहिम में हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं,
0: और इसी उद्देश्य को लेकर के टीवी कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन को सफल बनाने में आप और आपका जो स्टाफ है और आपका जो स्वास्थ्य विभाग है, किस तरह से योगदान कर रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए।
1: हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि एक विश्व से टीवी को जड़ से समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा था, 2030 एलिमिनेट करना है, टीवी फ्री करना है इंडिया को, बट थोड़ा सा अभी ये महामारी एक कोविड के रूप में हमारे पास आई, जिसने हमारे 3 साल इसमें हमारे खराब हो गए, लेकिन फिर भी हमने अब महामारी से अपने आप को उभरते हुए इस टीवी प्रोग्राम पे हमने अपना फोकस रखा हुआ है कि हम आज भी अपने जो माननीय मोदी जी का विजन है 2025 तक टीवी फ्री करने का, तो उसको हम सुचारू रूप से सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे भी। और रही बात हमारे योगदान की, तो देखिए सर, हम तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं जी, तो हमारा तो मेनली उद्देश्य ही है कि टीवी को जड़ से समाप्त करना। तो सभी हमारी पूरी टीम, आशा, आंगनबाड़ी और आपका जितने भी MOs हैं, CHOs हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और भी जो भी हेल्थ से हमारे रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे ही हम इसको बीमारी को जल्द से जल्द अपने टीवी इंडिया से बाहर कर सके।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने आशाओं की बात की, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनकी बात की, तो ये किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे रही हैं?
1: सर, इसमें अभी हमको ना 100 दिवसीय टीवी सघन रोगी खोज अभियान हमने सरकार ने चलाया हुआ है। उस 100 दिवसीय में क्या है कि हम 1 जनवरी से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने प्रदेश में, और उसको हम 24 मार्च तक हम इसको चलाएंगे। तो इस 24 मार्च तक हमको वेनरेबल जो पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि जब हम स्क्रीन करेंगे तो उसमें हमें टीबी के पेशेंट मिलेंगे। तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, जो हमारे CHOs हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पेशेंटों के उनके कॉन्टेक्ट से मिल रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर उनमें कहीं ना कहीं ये 5 लक्षण आपको दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से लगातार खांसी, किसी अगर हमें स्क्रीनिंग चिन्हित किए हुए व्यक्ति में दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, रात पर कमर पर पसीने का ज्यादा आना हो, वजन अचानक उसका गिर गया हो, वजन बहुत ज्यादा कम हो गया हो, और लो ग्रेड फीवर, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे उसको बुखार और अधिक होता चला जाता है, उसको हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। अगर ऐसे और किसी के बलगम में खून का आ रहा हो, किसी की बॉडी में कहीं कोई गांठ दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं। और अभी 100 दिवसीय सघन उसमें क्या कह रहे हैं, वेनरेबल पॉपुलेशन में हमने 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी हमने क्या कह रहे हैं, वेनरेबल पॉपुलेशन में चिन्हित किया है। स्मोकिंग करने वाले, एल्कोहल कंज्यूम करने वाले, वो भी व्यक्ति हमारी सस्पेक्ट वाली श्रेणी में आते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 18.5 से कम हो, उस व्यक्ति को भी हम क्या कह रहे हैं, इसमें वेनरेबल उसमें हम क्या चिन्हित करते हैं। कुछ आपका डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटीज जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक जननी होती है हर बीमारी की। तो हमने उस डायबिटीज पेशेंट को भी हमने एक चिन्हित करा है अपनी इसी स्क्रीनिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद में हम उनका क्या कह रहे हैं, उचित माध्यम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो पीपीपी मॉडल पे, तो उनमें हम उनकी जांचें करवा रहे हैं स्क्रीनिंग करने के बाद। तो अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो देन उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने उनके लक्षणों के बारे में बताया, और जो हमारी आशाएं हैं या आपने आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं उनका नाम लिया, और भी हमारे जो CHO हैं, ये तो अपनी भूमिका बखूबी निभाई रहे हैं, लेकिन हमारे जो आम इंसान है, कहते हैं ना कोई भी अभियान जब तक सफल नहीं होता जब तक हर इंसान उसमें अपना योगदान ना दे, तो हमारा जो आम इंसान है वो किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे सकता है ताकि हम TB मुक्त भारत बना सके।
1: सर, जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि 5-6 लक्षण मेन लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से लगातार ज्यादा खांसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बुखार ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या कह रहे हैं लगातार उसका वजन कम होता जा रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, या रात में कमर पर ज्यादा पसीने आ रहे हो, या किसी को गांठें दिखाई दे रही हो बॉडी पे, तो ऐसा व्यक्ति, आम लोग भी हम ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग वातावरण में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर हम उनको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि पड़ोस में कोई खांस रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है, तो हम उसको एक सलाह दे सकते हैं कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जहां फ्री में आपकी जांचें होंगी। अगर उसमें टीबी आपको पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको फ्री में ही उसका इलाज भी मिलेगा, और साथ में सरकार जो एक इलाज के साथ में निक्षय पोषण योजना के तहत उसको 3,000 रुपये, अभी पहले क्या था 500 रुपये पर मंथ था, लेकिन सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया, उसको 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। तो जो ड्यूरिंग है आपका इलाज के दौरान 6 मंथ का इलाज होता है, तो उसमें उसको पेशेंट को 6,000 रुपये भी मिलते हैं।
0: तो सर, ये तो निक्षय पोषण जो पोर्टल है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, टेस्ट के जरिए ये पुष्टि भी हो जाती है कि भाई आपको टीबी है, तो उस दौरान जरूरत पड़ती है उसको अच्छे पोषण की, तो क्या क्या उसको खाना चाहिए उसके बारे में भी आप सही जानना चाहिए।
1: जी जी, देखिए टीबी का जो पेशेंट होता है अल्टीमेटली ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी रोग उसको बड़ी जल्दी घेर लेता है। तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट्स का लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मांसाहारी हैं तो मांस से ही आपको क्या कह रहे प्रोटीन मिलेगा। दाल है हमारी, अंकुरित करके दालें खाइए, चने खाइए, आप पनीर ले सकते हैं, और जो भी क्या कह रहे प्रोटीन जिसमें दूध आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, तो जो भी प्रोटीन फुल क्या कह रहे आपकी डाइट्स में उसको ज्यादा से ज्यादा शुमार करिए। तो जब आप प्रोटीन युक्त अगर डाइट लेंगे तो पेशेंट का इम्यून जो पावर है वो स्ट्रांग होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपने उसमें आहार में वो सम्मिलित करें, जिससे कि इस बीमारी को जल्दी से वो भगा सके।
0: बहुत से टीबी के मरीज ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो आपने बताया कि प्रोटीन युक्त आहार उनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, घनी बस्तियां हैं, अब ऐसे में अगर उनको टीबी हो जाता है तो पोषण की बड़ी दिक्कत रहती है, कैसे एक तो मजदूरी मिली ना मिली, तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई ऐसी कोई योजना है या कोई ऐसे लोग हैं इस योजना से जुड़े हुए जो उनकी मदद कर पाए?
1: देखिए, मलिन बस्तियां हमेशा हमारे प्रायोरिटी पे रही हैं और हम समय समय पर मलिन बस्तियों में जाके कैंप भी लगाते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी निःशुल्क जाँचें करवाते हैं। जाँच करवाने के बाद अगर टीबी रोगी पाया जाता है पॉजिटिव, तो सरकार उनको निश्चय पोषण योजना, एक निश्चय पोषण योजना सरकार ने चला रखी है, उसके माध्यम से सरकार उनको 1,000 रुपये DBT के माध्यम से उनके डायरेक्ट बैंक में उनके खाते में वो 1,000 रुपये देती है, और वो जब तक इलाज उसका चलता है जब तक सरकार हर महीने प्रति उसमें क्या कह रहे उनको 1,000 रुपये देती है।
0: ये योजना इसके अंतर्गत जो निक्षय मित्र हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं वो भी इस अभियान में आगे आना चाहते हैं, सक्षम हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, दूसरों का भला चाहते हैं, तो किस तरह से इसमें अपना योगदान कर सकते?
1: सर, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि कोई भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जब तक फलीभूत नहीं हो सकती, जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती, जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी ना हो, तो ये निक्षय मित्र जो कॉन्सेप्ट है, ये सरकार क्या कह रहे हैं आम लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो हमारे क्या कह रहे जनप्रतिनिधि हो, हमारे कोई अफसर हो, क्योंकि हमारे तो राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया था निक्षय मित्र बनाने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में जुड़े। निक्षय मित्र वो व्यक्ति हो सकता है जो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीबी रोगी को उस इलाज के दौरान उसकी हालचाल पूछे, उसको खान पीन की भी अगर वो व्यवस्था कर सकता है, एक निक्षय पोषण पोटली बोलते हैं उसको हम, तो वो निक्षय पोषण पोटली भी उसके इलाज के ड्यूरिंग उसको देता रहे। और सबसे बड़ी बात है उसका मोरल, जो उसको बार बार पूछ के उसका जो मोरल को हाई करता रहे कि भाई अगर बीमारी है आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीच बीच में उसको बताता भी रहे, क्योंकि ये भी एक निक्षय मित्र की मैं समझता हूँ कि एक उसका दायित्व है ये टीबी की बीमारी स्प्रेड ना हो, तो टीबी के मरीजों को ये भी समझाए वो कि भाई आप हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखें, इधर उधर ना थूकें, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब ना खाए पिए, जिससे कि ये बीमारी अपना विकराल रूप ना ले सके।
0: कहने का मतलब यह है कि जो निक्षय मित्र हैं वो टीबी पेशेंट का हालचाल पूछे, उनका मनोबल भी उड़ाते रहे, साथ ही साथ उनको कुछ सावधानियां भी बताते रहे ताकि वो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा जाए। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति हमारी आपकी बात सुनकर के रेडियो के माध्यम से निक्षय मित्र बनना चाहता है तो कहां पर जाके संपर्क करें?
1: सर, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो वो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां भी डॉट सेंटर्स हैं, वो वहां जाके सिर्फ मिल सकता है हमसे, और एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर अपना उसको देना है। हम उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से उसको क्या कहते अपने निक्षय उस पर रजिस्टर्ड कर देंगे और वो निक्षय मित्र के रूप में हमारा वर्किंग कर सकते।
0: बिल्कुल, तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं अगर अपना योगदान इस अभियान में देना चाहते हैं तो जैसा सर ने बताया है उसके जरिए आप निक्षय मित्र बन के किसी का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और सर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास पेशेंट भी आते हैं और वो उन्होंने टीबी को हराया भी होगा, तो हम कुछ ऐसे जो टीबी चैंपियन है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहले बहुत परेशान थे लेकिन अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं आराम से, तो उनके बारे में कुछ बताइए।
1: जी बिल्कुल सर, क्योंकि बातें करें तो मैं 2004 से इस जॉब में हूँ और 2004 से ही मैं क्या कह रहा टीबी के पेशेंट देख रहा हूँ, और हजारों पेशेंटों को मैंने अपने सामने ठीक होते हुए देखा है। और एक टीबी का रोगी जब आता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो खटिया पे ही लेटा हुआ आता है, और जब वो अपना डॉट्स का पूरा इलाज लेता है तो वो एक स्वस्थ जीवन जीता है, और कुछ सावधानियों के साथ में। जैसे अभी अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कपड़ा है कोई आपकी शर्ट है और शर्ट पर एक ही शर्ट है, आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, तो करते क्या है कि शर्ट अगर कहीं फट गई तो उसमें क्या करेंगे, सिलाई

0: है टीवी फ्री इंडिया करने की, उसमें ये भी लोग हमारे बहुत बड़ी मदद।
1: बिल्कुल सर, तो बहुत सारी बातें आज रेडियो के माध्यम से आपने हमें बताई, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और जो टीवी पेशेंट है हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल जागरूक रहेंगे। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अभी जो टीवी कैंपेन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो टीवी के जो भी मैंने अभी पूर्व में लक्षण बताए थे, उन लक्षणों को सभी लोग, जो हमारे श्रोता हैं, वो सभी लोग इसको जान लें, और जानने के बाद अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सराउंडिंग में दिखाई देता है, रिश्तेदारी में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके क्या कह रहे पड़ोस में हो, या कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति है, तो आप उसे चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को ये समझाएं कि भैया ये लाइलाज बीमारी नहीं है, आप इसके लिए पहले सरकारी जो केंद्र है, डॉट सेंटर है, उस पर आप जाइए, जाने के बाद वहाँ निःशुल्क जांचें होती हैं। अगर आपको ये पॉजिटिव आ भी जाता है, टीबी रोग आ भी जाता है, तो आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इसमें पूर्णतः क्या कह रहे हैं आपको इलाज लेना है, जितनी भी अवधि का वो डॉट सेंटर में बताते हैं। तो दो तरीके की हमारे यहाँ टीबी अभी मुख्यतः चल रही है, एक सिंपल टीबी और एक एमडीआर टीबी। उसमें क्या होता है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, तो कुछ ड्रग्स हैं जिससे वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसका भी कारण ये कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर पेशेंट रहा होता है, या कहीं ना कहीं वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो पहले से वो एमडीआर का पेशेंट था। तो यही है कि सभी लोग जागरूक बने, इन चीजों को देखें, और हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको भी जागरूक करें कि भैया समाज में आपको तो इलाज लेके ठीक होना ही है, लेकिन आपको दूसरे को भी बचाना है, दूसरे व्यक्ति को आपसे ग्रसित नहीं होना, ये चीजें आप थोड़ा सा वो जागरूकता सभी लोग फैलाएं। और जैसे कि आपने बताया ही है पूर्व में कि भाई आम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी तभी हम इस रोग को हरा पाएंगे, ऐसा कोई सरकारी तंत्र नहीं है कि वो स्वयं इसको हरा देगा। जब तक आम मानस घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, जब तक हम टीबी को नहीं हरा पाएंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें।
1: बिल्कुल सर, जो भी इस अभियान से जुड़े हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो सूचना लोगों तक पहुंच रही है वो भी अपनी भागीदारी निभाएं, तो हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। एक और चलते चलते बात सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो शारदा विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है सुनो शारदा 90.8 FM, ये भी जन जागरूकता फैला रहा है टीबी के लिए, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान में जो अब तक भूमिका रही है शारदा रेडियो स्टेशन की?
0: सर शारदा रेडियो स्टेशन की जो भूमिका रही है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से क्या सभी आपके श्रोताओं और आप चैनल के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही जागरूकता प्रोग्राम आप चलाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस जागरूकता से बहुत से लोगों का जीवन बच सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको धन्यवाद पुनः देते हुए कि आप ऐसे जागरूकता अभियान टीवी है या और भी डिसीज को लेके जो भी जागरूकता अभियान है वो हमेशा चलाते रहे।
1: बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे ही अभियान चलते रहेंगे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
4: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
5: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
4: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
5: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
4: है?
5: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए
6: टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का

0: पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए। यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम से, मैं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, जिसका फोकस टीवी पर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि हमें देश को टीवी मुक्त करना है, तो इसी क्रम में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। बार बार रेडियो के जरिए आप तक बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचती हैं और आगे भी हम पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि टीवी मुक्त भारत बनाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी क्रम में आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड एचओडी डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे टीबी के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे विचार श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: बिल्कुल सर, और हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो टीबी है आखिर ये है क्या, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं?
3: देखिए, इस सवाल का जवाब देना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यूं समझिए कि ये टीबी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी कोविड आया कुछ दिन में जो इवॉल्व हुआ, ये हजारों साल से चली आ रही है। पहले इसको एक आनुवंशिक बीमारी माना जाता था। रीजन ये था कि एक परिवार में अगर किसी एक सदस्य को हो गई तो ये हम जानते हैं कि एक से दूसरे में फैलने में देर नहीं लगती, और इलाज थानी इलाज की क्वेश्चन तो बाद में उठता है। पहले किसी को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है ना, तो लोग बोलते थे कि एक ही परिवार के सभी लोगों में तो ये आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन बाद में एक जो लैंडमार्क आया ट्यूबरक्लोसिस में, दैट वाज 1882, जब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया एक कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, ये एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये तो एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। इन्फेक्शियस प्रॉब्लम जो एक कीटाणु से होती है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चीज़ तो अब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो अभी सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, और उस बैक्टीरिया का नाम हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, और एक इंसान जिसके फेफड़े पहले से प्रभावित हैं, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वो हवा में रिलीज करते हैं, और उसी हवा को जब कोई दूसरा एक इंसान एक सांस के रूप में अंदर लेता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। मतलब इन्फेक्शन के चांसेस, ये हम ऐसे बोलते हैं कि टीबी होने के चांसेस, कि जितने लोगों के शरीर में बैक्टीरिया जाता है उन सभी को टीबी नहीं होती। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो इम्यूनिटी उन बैक्टीरियाज को मार गिराती है, और जिनकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है, या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में जाते हैं, या बैक्टीरिया बहुत एक टर्म यूज़ करते हैं कि विरुलेंट होते हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर इंसान की जो इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाती, और उनमें वो टीबी का फिर प्रोग्रेशन हो जाता है, खांसी होना, बुखार होना, फिर ये सब कुछ चल जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब वो एक इंसान कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाता है, किसी मीटिंग के अंदर में खांसता छींकता, वो दूसरे लोगों को फैलाता है, और ये चेन चलती रहती है।
2: बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टीबी है वो आनुवांशिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, ये एक जैसा कि सर ने बताया बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। अब बात आती है सर यहाँ पर लक्षणों के बारे में, तो किस तरह से कोई आम आदमी पहचान ले कि हो सकता है इनको टीबी हो गई है, तो ऐसे कौन कौन से वो सामान्य लक्षण होते हैं?
3: देखिए, वैसे जब बोलते हैं मेडिकल साइंस में 2+2=4 रेयरली होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लक्षण हैं जो जाने जाते हैं कि टीबी के मरीज में होते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अगर खांसी है किसी इंसान को और उसको 2 हफ्ते ऐसे ज़्यादा हो गए हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक सस्पिशन होना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। टीबी के मरीज को बुखार आता है जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर, मतलब बुखार बहुत तेज़ नहीं होता लेकिन शाम के टाइम यूजुअली बढ़ने लगता है। और जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि जी हरारत सी होने लगती है रात में। कुछ मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि भी रात में उनको पसीने आते हैं, मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका वज़न कम होना, कभी कभी खांसी के साथ में ब्लड आना। तो ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये जो लक्षण बताए, ये यूजुअली तब होते हैं जब फेफड़े वाली टीबी होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में फेफड़े वाली टीबी, और उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई सुन के ये बोले, कई बार मरीज ये आते हैं कि जी मुझे तो खांसी हुई नहीं, मुझे तो हल्का बुखार आया था डॉक्टर, अब आप बोल रहे हो कि भी ये टीबी कैसे हो सकती है, मुझे तो खांसी कभी हुई नहीं है ना, दुनिया बोलती है कि खांसी होती है ना। कुछ ये बोलते हैं जी मुझे तो बुखार आया ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं जितने सिम्टम्स जितने लक्षण का मैंने नाम लिया वो सभी एक साथ हों या सभी मरीजों में, किसी किसी मरीज में ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी मरीज आते हैं कि जी वज़न कम हो रहा है, सिर्फ वज़न कम हो रहा है, खांसी भी नहीं है बुखार भी नहीं है ना, लेकिन पता चला या फिर उसने बताया हमें कि पिछले 2 महीने में मेरा 5, 6 या 7 किलो वज़न कम हो गया। तो कई बार सिर्फ वज़न ही कम होना एक लक्षण होता है, कभी कुछ भी नहीं होता, पेशेंट आता है जी वो खांसा मैंने और खांसी में ब्लड आ गया मेरे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण सभी मरीजों में देखने को मिले, कभी कभी एक ही लक्षण होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ लक्षण बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि भी टीबी।
2: तो सर ये तो बात रही टीबी के लक्षणों की, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रारंभिक जांच होती हैं, टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए टीबी की पुष्टि की जाती है।
3: एक तो जो डॉट सेंटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर 5 किलोमीटर के रेडियस में बनाए गए हैं जो सभी जगह उपलब्ध हैं। अगर खुद को भी ये लगता है कि लक्षण टीबी जैसे हो सकते हैं तो आप वहाँ डायरेक्टली जाके भी वो जाँच करा सकते हैं। और जाँच होती है कि सिंपल बलगम देना होता है, और बलगम में एक बोलते हैं कि स्पुटम फॉर AFB एसिड फास्ट बैसेलाई या ZN स्टेनिंग, जिसमें हम बैक्टीरिया जो टीबी के बैक्टीरिया हैं उनको स्टेन करके देखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा साथ के साथ अगर फैसिलिटी है तो छाती का एक्सरे करा सकते हैं, और उसके बाद में तो फिर एडवांस टेस्ट बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हम अभी टर्शियरी लेवल पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हैं हम पता करते हैं, बलगम भी नहीं आ रहा तो उसके लिए भी बहुत कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन जो 2 मेन टेस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो यूजुअली प्राइमरी लेवल के जो केयर होता है वहाँ पे भी होते हैं, वो एक्सरे चेस्ट, छाती का एक्सरे और बलगम की जांच टीबी के कीटाणु के लिए।
2: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही टीबी की जांच की, अब बात कर लेते हैं अगर किसी भी व्यक्ति की टीबी की जांच में पुष्टि हो जाती है टीबी की, कि आपको टीबी का संक्रमण हो चुका है, तो इसका इलाज क्या है?
3: देखो इलाज है, सबसे पहली बात तो कुछ लोग का तो क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, इसका इलाज है भी कि नहीं। हाँ मैं बोलता हूँ इलाज है। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा हर एक इंसान के लिए फ्री में जो मेडिसिन है वो उपलब्ध है। जैसे मैंने बोला कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में गवर्नमेंट ने एक डॉट सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है, और हैं भी वो, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी डॉट सेंटर है जहाँ से हम टीबी की दवाई मुफ्त में देते हैं। और यहाँ तो खैर हमारा वो एक मेडिकल कॉलेज का डॉट सेंटर है, तो हम यहाँ तो हम बिगड़ी हुई टीबी की दवाई भी जो बहुत कॉस्टली होती है, और उनमें एक मेडिसिन तो आपको जान के ताजुब होगा कि एक टैबलेट की कीमत 10,000 रुपये होती है ना, और वो भी फ्री में दी जाती है हमारे डॉट सेंटर के माध्यम से। और ये है कि ऑलमोस्ट 97-98% रिकवर्ड ईजिली हो जाते हैं। 1-2% केसेस में कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या फिर कई बार मेडिसिन बंद करनी पड़ जाती है कि भाई उसका लीवर ख़राब होने लगा या पेशेंट को उल्टी आने लगी, वो चीज़ भी मैनेजेबल है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा श्रोताओं को कि बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि मैंने दवाइयाँ स्टार्ट तो की थी लेकिन मुझे उल्टी आने लगी, जी मुझे सूट नहीं की मैंने तो छोड़ दी वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है, आप डॉक्टर के पास आइए, जो साइड इफेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन होती है, तो अल्टीमेटली वो भी कंट्रोल हो जाएगी।
2: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर जो पेशेंट हैं मरीज हैं अगर वो नियमित रूप से दवा खाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे, जो भी पेशेंट हैं उनको टीबी हो गया, उनका इलाज चल रहा है, दवाई वो खा रहे हैं, तो उस दौरान उनका जो पोषण है, उनकी जो दिनचर्या है, वो कैसी होनी चाहिए?
3: अभी जब मैंने आपसे जिक्र किया कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी टीबी है, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। उस समय इसका ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, तो उस समय हुआ करते थे सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि शहर के बाहर, आबादी के बाहर एक खुली हवा में एक शेल्टर बना दिए जाते थे, जहाँ सभी टीबी के पेशेंट रहते थे। और कॉन्सेप्ट ये होता था कि अच्छी धूप, अच्छी हवा और अच्छा खाना पीना किसी हद तक उनको ठीक करेगा। तो वही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पे पोल्यूशन कम हो। यहाँ पे हम जो पौष्टिक खाने की बात करते हैं, एक तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं और एक इसमें करते हैं स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट। तो पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से प्रोटीन हमें मिलता है। एक तो जितने भी दालें होती हैं, सख्त टाइप की दालें, चाहे मसूर की दाल, उड़द की दाल, काली दाल, पीली दाल, उन सबको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मांस, मछली, ये सब ये प्रोटीन के पार्ट हैं। बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर में कुछ विटामिन्स भी हों, तो हम यहाँ एडवाइस करते हैं कि कुछ फ्रूट्स लें। और ये पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए या इसकी डाइट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी रुपये हर महीने उन मरीजों को देती है जिनको टीबी पाई जाती है।
2: तो सब चलते चलते हमारे और श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में?
3: मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट एक्सपायर होने जा रहा, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन टीबी के पेशेंट को मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट तक ले जाएं, उसको पकड़ के उसका इलाज कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर उसको आज ठीक नहीं कराया तो वो आपको भी फैलाएगा, कुछ दिनों बाद आप भी उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे।
2: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना।

0: तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: In 2018 में यहाँ पे JEE के 22 केसेस मिले थे जिसमें 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी।
8: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पर मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पर हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
7: आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
9: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
10: पानी उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
7: बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
8: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये
7: एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
9: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, आजकल अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी खेती में बहुत ज्यादा लागत आ रही है और जल, वायु, भूमि, साथ ही हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है। और इसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमको खेती से मिलते हैं वो भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की जो सिफारिश है हमारे कृषि वैज्ञानिक आजकल आपसे कर रहे हैं। भारत सरकार भी जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा प्रयोग से हमारे जो खेतों की मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जो जैविक खाद है वो काफी कारगर है। तो किसान मित्रों, जैविक खेती करके आप भी कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की। किसान मित्रों, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि जब लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। और किसान मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती करके जब कोई भी फसल आप प्राप्त करेंगे, उसको बाजार में ले जाएंगे, तो उन जैविक उत्पादों का बाजार में बहुत ज्यादा मूल्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसको शुद्ध अच्छी चीज मिले ताकि वो स्वस्थ रहे। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज के आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करें ताकि हमारा जो भारत है वो स्वस्थ बने, शक्तिशाली बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो बागवानी में रोजगार हासिल कर सकते हैं। बागवानी अपने अंदर तमाम संभावनाएं समेटे हुए है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए भविष्य में सुनहरे आय का एक साधन बन सकती है। किसान मित्रों, कुछ सालों में बागवानी फसलों के उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। फल सब्जी की मांग बाजार में साल भर रहती है। पारंपरिक फसलों में बढ़ते नुकसान और कम होते मुनाफे के मद्देनजर अब हमारे किसान भाई बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और हम वर्तमान समय की बात करें तो देश के बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो बागवानी करके अच्छी खासी आय प्राप्त कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में हमारे किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों के उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से हमारे किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार एक मिशन भी चला रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और इस मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपको बता दें कि शहरों में सब्जी की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो रही है। शहरी कृषि में सब्जी की खेती से न केवल शहरों में ताजी सब्जियों की आपूर्ति होती है, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो किसान मित्रों, आप भी बागवानी करके अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही बागवानी की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी। किसान मित्रों, अगर आप खेती के साथ साथ मछली पालन करके और ज्यादा आमदनी करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है। बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण बहन भाई इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसीलिए भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इसे मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में सबसे बड़ी योजना माना जाता है। इसके तहत हमारे किसान भाइयों को मछली पालन के लिए ऋण और निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप खेती के साथ साथ मछली पालन भी करना चाहते हैं और आपके पास इस काम को शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और मछली पालन व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: मेहरबानो, पीछे से विश्वामित्र, एकदम से आगे ठहरो सत्यवादी हरिश्चंद्र, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आखिर आ लिया।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हरिया कालिया के पास और अपनी दर्द भरी सारी कहानी बताई। मेरी ब्याही ने मुझे हाथ पकड़ के डांट लिया, लेकिन मैंने तेरी भय की वजह से और अपने धर्म की खातर आज ब्याही से चीर ले लिया। कितना अधर्म मैंने किया।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर नरी

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुनो शारदा 90.8 FM ने स्मार्ट के साथ मिलकर एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है हिंसा को नो। हिंसा को नो के अंतर्गत अभी तक हम 5 प्रोग्राम ला चुके हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम था बेटियां हैं तो वंश हैं, जहां पर हमने परिवार में बेटियों के होने के महत्व के बारे में बातें की थी। दूसरा प्रोग्राम था बालिका या वध, जहां हमने बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जिससे लड़कियां जूझती हैं, जिससे लड़कियां गुजरती हैं, उन बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो प्रोग्राम चलाया था उसका नाम था खतना, धर्म नहीं दर्द, जिसे हम इंग्लिश में FGM के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन। इसमें हमने बात करी कि किस तरह से धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर बाल उम्र में शारीरिक दर्द, जिसको एक रिवाज का नाम, एक विश्वास का नाम दिया जाता है, और लड़कियां इस चीज से जूझ रही हैं। हमने बात करी थी कि क्या कानूनी सलाह है इसके बारे, और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। हमारा अगला प्रोग्राम था पितृसत्ता, जहां पर हमने बात करी थी असामान्य व्यवहार, असामान्य दिशा, लड़कों और लड़कियों के बीच में जो असामान्य व्यवहार है जिसे हम पैट्रियार्की भी कहते हैं, जहां पर मर्दों का बोलबाला ज्यादा होता है, जहां पर मर्दों को एक स्ट्रांग पावर की तरह देखा जाता है। जो औरतें या जो महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं उनके बारे में बातें करी थी। फिर हमारा अगला प्रोग्राम था माँ बाहर जाना है, जहाँ हमने बात करी थी कि किस तरह से एक ही घर में रहने के बावजूद उन्हें अलग दर्जे से देखा जाता है, जिसमें हमने बात करी थी घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवाल्य सुरक्षा के बारे में। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कच्ची उम्र की शिक्षा के बारे, किस तरह से कच्ची उम्र में बहकना बड़ा आसान होता है और कैसे शिक्षा हमारे लिए जरूरी है लेकिन कई बार वो एक अलग ही रूप ले लेती है। तो आइए इस पर आधारित सुनते हैं ये प्रोग्राम।
6: बहके सवाल और शरीर में बदलाव इस उम्र में आम बात है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है। जितना मुश्किल इस उम्र के बच्चों को समझाना है, उतना ही मुश्किल उनके लिए समझना है। बेहतर होगा माँ बाप उनके दोस्त बन जाएं, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को दोस्ती ज्यादा भाती है, और दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हम अपने दिल की बात बिना हिचक कर बोल देते हैं। और इस दौरान आप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए आइए इस कविता के द्वारा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस उम्र के सवालों को। बदली हूँ मैं, बदले मेरे विचार, कैसे समझाऊँ मैं अपने दिल की बात। शर्म है आँखों में पर दिल में है सवाल, पूछ लूँ क्या कहीं हो ना जाए बवाल। नया सा एहसास छुआ उसने मुझे आज, नया सा एहसास छुआ उसने मुझे आज, क्या सही है ये बात। खोई हूँ मैं अपने सपनों के शहर में, और नहीं करनी मुझे इस बात में और बहस। इतने सारे सवाल, क्या जवाब दे पाओगे आप?
7: मैथ्स टीचर की नजर और वो हाथ आज भी याद है। क्या हुआ था उस शाम, क्या सुन पाओगे वो दास्तान?
8: सोचती हूँ मैं, क्या था उस टीवी पे जिसे आंखें दिखाकर बंद किया था वो एड?
6: क्या सही क्या गलत, इसमें ही झुलस रही हूँ मैं आज।
7: जिम्मेदारी के लिए बड़ी और सवालों के लिए छोटी हूँ मैं। माँ कहती है अब बच्ची नहीं हूँ मैं।
6: मुझे दोस्तों की बातें सच्ची और बड़ों की बातें कच्ची लगती हैं। आखिर नशे में डूबी शाम किसी अच्छी नहीं लगती है। और जवाबों में चुप हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते ना, नहीं चाहिए मुझे आज। क्योंकि उम्र है कच्ची और हूं मैं मासूम, कैसे बचाऊंगी खुद को गुमसुम, ना जान पाऊंगी कौन है अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, जब तक छुपाओगे मुझसे इस बदलाव का सच। या फिर हो सकती है ऐसे आपकी बच्चे की कहानी। चलिए आइए इस कहानी को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं।
9: यार त्रिशा तो कितनी बोरिंग है।
10: क्यों?
9: क्योंकि तो पुराने सोच की है।
10: क्या मतलब है तेरा?
9: मतलब मेरा और जानवी हम दोनों का बॉयफ्रेंड है, पर तू अभी तक सिंगल है यार।
11: हे टीना चलना, तेरे को अमन बुला रहा है।
10: यार रुक जाओ ना टीना, थोड़ी देर में अकेली हो जाती हूँ।
9: इसीलिए ना तुझे समझा रही थी कि बॉयफ्रेंड बना ले।
10: यार मैं अभी तो 9th क्लास में हूँ।
9: कर दी ना गवारों वाली बात, आजकल लोगों के 3rd-4th क्लास में बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और हम तो फिर भी 9th क्लास में। अच्छा सुन, मेरा बॉयफ्रेंड का एक फ्रेंड है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, बोल तो मैं उसको तेरा नंबर दे दूं।
10: ठीक है, पर लड़के की फोटो तो दिखा।
9: ये देख
10: यार, ये तो मेरी एज से काफी बड़ा लग रहा है।
9: यार तेरे को शादी थोड़ी करनी है, बस टाइम पास ही तो करना है।
10: फिर भी
9: यार अगर इतना सोचेगी तो लाइफ में मजे कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा चल मैं जा रही हूँ, अमन मेरा वेट कर रहा है।
10: यार मैं हर बार अकेली हो जाती हूँ, न्यू ईयर हो या वैलेंटाइन वीक, जानवी और टीना तो निकल जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या टीना ठीक बोल रही थी, मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। और सही तो है, टाइम पास में कोई तो चाहिए, तो बॉयफ्रेंड ही सही। चलो टीना को कॉल करके बोलती हूँ।
9: हेलो।
10: हेलो, तू बोल रही थी ना कि कोई सिंगल है जिसको मेरा नंबर देने की बात कर रही थी तू?
9: ओह अमन का फ्रेंड विशाल, जिसकी फोटो दिखाई थी तुझे मैंने।
10: हाँ यार मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए।
9: ठीक है मैं उसको तेरा नंबर दे दूंगी, वो तुझे मैसेज कर देगा।
10: ओके।
9: ओए तेरे को विशाल का मैसेज आया था क्या?
10: हाँ यार, बट वो बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था और वो वैसे भी पिक्स मांग रहा था।
9: हाँ तो यार दे देना, वरना वो गुस्सा हो जाएगा।
10: नहीं यार।
9: देख यार मैंने भी दी थी और वो अच्छा है, मिसयूज नहीं करेगा तेरी पर्सनल पिक्स का। और मैं हूँ ना, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। और अगर तू नहीं करेगी तो वो तुझसे बात नहीं करेगा यार, वरना तो तू ऐसे ही सिंगल रह जाएगी। चल बाय
10: बाय।
9: ओए बोरिंग पर्सन।
10: हाय टीना।
9: तूने दिया पिक्चर्स कल विशाल को?
10: हाँ यार, आखिर आई लव हिम।
9: चल यार।
10: यार उसने मेरे से 10,000 मांगे और बोला बहुत इम्पोर्टेंट है।
9: तो यार दे दे, आफ्टर ऑल यू लव हिम, और वो तुझे वापस कर देगा, डोंट वरी।
10: पर यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
9: तो मम्मी से बोल दे कि तुझे कोई कोचिंग के लिए पैसे चाहिए।
10: नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल सकती।
9: देख त्रिशा, बॉयफ्रेंड के लिए तो तुझे इतना करना पड़ेगा।
10: ओके ट्राई करती हूँ। मम्मी मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग करनी है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे 10,000 चाहिए।
6: बेटा देखो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, पापा की सैलरी भी नहीं आई है अभी तक और कोरोना भी फैला हुआ है, ऐसे में हम तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते हैं।
10: मम्मी प्लीज।
6: एक बार बोल दिया ना नहीं, और तुम कब से जिद करने लगी, पहले तो ऐसे कभी नहीं किया। जाओ अपने कमरे में।
11: हे त्रिशा।
10: हाय जानवी।
11: सुन टीना और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तू भी चलना, विशाल भी आ रहा है।
10: ओके।
9: यार जानवी चल, हम थोड़ी प्राइवेसी दे देते हैं न्यू लव बर्ड्स को।
11: ओके ओके क्यों नहीं।
12: हाय त्रिशा।
10: हाय।
12: क्या हुआ, कैसी हो तुम?
10: यार फोन पे तूने बोला था ना कि तुझे 10,000 की जरूरत है,
12: वो ले आई तुम? यार तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू सो मच यार।
10: नहीं यार मम्मी ने मना कर दिया।
12: देख त्रिशा अगर तुम इसे प्यार करती तो सचमुच तो लेकर आती, लेकिन तुम इसे प्यार नहीं करती इसलिए तू पैसा लेकर नहीं आई है।
10: नहीं विशाल, सच में मैंने बहुत ट्राई किया बट मम्मी नहीं मानी।
12: ठीक है, मम्मी तो नहीं मानी, लेकिन मुझे पता है कि तुमसे कैसे पैसे निकलवाने हैं।
10: मतलब?
12: याद है तूने मुझे कुछ अच्छी अच्छी पिक्स भेजी थी?
10: हाँ, क्योंकि आई लव यू।
12: नी यू डोंट। अब वो सारे पिक्स मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा।
10: नहीं विशाल, मैंने बहुत ट्रस्ट करके वो पिक्स तुम्हें दी थी।
12: और मैंने भी तुमसे ट्रस्ट करके ही पैसे मंगवाए थे, और अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो वो पिक्स सोशल मीडिया पर घूम रही होंगी, समझी?
10: मम्मा प्लीज, मुझे कोचिंग के लिए पैसे दे दो।
13: एक बार बोल दिया ना, तुम्हें बात समझ नहीं आती? नहीं है हमारा भी इतना बजट, और एक बार और जिद की ना तो पापा से शिकायत कर दूंगी।
14: यार त्रिशा, विशाल ने तेरी सारी पर्सनल पिक्स सोशल मीडिया पे डाल दी यार।
15: ये तो बहुत मासूम बनती थी, ऐसे ही होगा जब अपने से बड़े लड़के को बॉयफ्रेंड बनाओगी।
10: बेचारी
16: शकल भोली और कर्म तो देखो।
17: आइए एक और कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। ये है ऋतिक, जिनकी लाइफ शुरू ही किताबों के साथ होती है। लोग न्यूज़पेपर विद चाय का कॉम्बो लेते हैं, लेकिन इनको ताने प्लस बुक्स का कॉम्बो दिया जाता है हर सुबह। चलिए आइए इनकी कहानी सुनते हैं।
18: मम्मी चाय देना।
17: हाँ हाँ, बस तुझे चाय ही तो पिलाती रह जाऊं, तेरे से पढ़ाई तो होती नहीं। 3 साल से देख रही हूँ क्लास में सेकंड ही आ रहा है। सुन, अगर इस बार तू सेकंड आया ना तो घर आने की तुझे जरूरत नहीं है।
18: शर्मा जी रोज मुझे सुनाते रहते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट आया है और अब मैं उसे अब्रॉड भेजूंगा, बट मेरा बेटा 3 साल से सेकंड ही आ रहा है। मुझे नहीं लगता तू कभी भी फर्स्ट आ पाएगा।
19: पापा मैं ट्राई कर तो रहा हूँ, आप ऐसा बोल के मेरा कॉन्फिडेंस लो मत करिए बार बार।
18: कॉन्फिडेंस तो तू मेरा लो कर देता है, और वो भी शर्मा जी के सामने। अगर इस बार तू फर्स्ट नहीं आया है तो घर पे ही बैठना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
19: ठीक है पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार पूरी जीत जान लगा दूंगा फर्स्ट आने के लिए।
18: नहीं तो पता है ना, पढ़ाई छुड़वा दूंगा तेरी।
19: ओके बाय पापा, एग्जाम देने जा रहा हूँ।
18: ठीक है,
19: एग्जाम तो इतना अच्छा नहीं गया, बट अब रिजल्ट ही बताएगा कल क्या होता है। वैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार।
20: क्या यार ऋतिक, तू इतना टेंशन लेता है जबकि तू पूरे क्लास में सेकंड आता है।
19: यार यही तो प्रॉब्लम है कि मैं हर बार सेकंड आता हूँ, फर्स्ट नहीं आ पा रहा, और मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया है कि मैं फर्स्ट ही आऊंगा, और अगर इस बार मैं फर्स्ट नहीं आ पाया ना तो शायद से मेरी पढ़ाई ही रुक जाए।
20: क्या?
19: हाँ, और मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया है फर्स्ट आने का, और कल रिजल्ट है, अब कल ही बताएगा क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है।
20: कोई नहीं यार, मुझे भरोसा है तू इस बार फर्स्ट ही आएगा।
19: चल बाय यार। यार मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मैं इस बार फर्स्ट नहीं आ पाया। शायद पापा सही ही बोलते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। फिर से पापा को शर्मिंदा होना पड़ेगा सबके सामने। यार ऐसे जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। यार क्या मुंह लेके जाऊंगा पापा के सामने,
18: इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कहां से आता है ख्याल, क्या फर्स्ट आना जान से बढ़कर हो गया है? इतना प्रेशर हम लाते कहां से हैं? अगर देखा जाए तो आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन खुद को बेहतर साबित करने का, और इन सब के बीच में हम अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं अपने जीने का मकसद। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिस तरह से मार्क्स जरूरी हैं, उस तरह से और भी काफी चीजें हैं जो जरूरी हैं। पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है, लेकिन खेलकूद, एक्स्ट्रा करिकुलम, म्यूजिक और बहुत कुछ है जो लाइफ में बहुत जरूरी है। कैसे इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए, बच्चों को आज ये सिखाना जरूरी है कि फर्स्ट आने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका खुश रहना, और इस उम्र में यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि माँ बाप उनके दोस्त हैं, ताकि वो अपने माँ बाप से हर एक बात, हर एक परेशानी, अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर सकें। और माँ बाप अकेले इस चीज के जिम्मेदार नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। हमारे स्कूल्स में मोरल साइंस जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जो कि जिंदगी में मोरल साइंस की ज्यादा जरूरत है हमें। इसीलिए मोरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है। हम हमेशा कहते हैं कि स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, और बच्चे जो इतना टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं स्कूल में, जिंदगी में वही काम आती हैं। और अगर स्कूल में ही हम ऐसी चीजों पे फोकस ना करें तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी ट्रैक से उतर जाती है। इसीलिए हमें ऐसी चीजें स्कूल में फोकस करने की बहुत जरूरत है और कंपैरिजन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज हर एक बच्चा दूसरे से कंपेयर करता है अपने आप को, हमेशा एक कंपटीशन की लहर दौड़ती रहती है जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। कब वो हद पार कर जाती है और कब वो उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर देती है कि वो उस चीज से ब्लैकमेल होने लगता है। हम हमेशा कहते हैं कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी एक खासियत है, हर बच्चा खुद में स्पेशल है। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है कोई खेलने में अच्छा हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा हो। इस चीज पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है और इन सब चीजों की वजह से आज जो हमारा टीन है, जो हमारे 13 से 19 साल के बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने किन किन तरह की तकलीफ उन्हें परेशान कर रही है। और ये तो कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में बातें कर रहा हूँ, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिनसे आज के बच्चों को दूर रखा जा सकता है अगर हम स्कूल में, घर पर, पेरेंट्स और टीचर सही चीज पर फोकस करें और बिल्कुल उनके दोस्त बनकर रहें, ताकि वो अपने परेशानी अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से शेयर कर सके, तो हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और ऐसी उम्र में आजकल के बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। वो किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करते, वो किसी से इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर डर रहता है और उसी चीज के पीछे अपनी जिंदगी का बहुत अहम साल या अहम वक्त जाया कर देते हैं। और कहीं बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि अगर उस टाइम दूसरी चीजों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज जिंदगी बदल चुकी होती। और ये सब सिर्फ बात ना करने से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात ना करने से ये चीजें होती हैं। इन सारी बातों को बताने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को समझेंगे, आप उनके दोस्त बनेंगे, उन्हें डांटने या सजा देने से पहले उनको समझने की कोशिश करेंगे और किसी भी परेशानी में अगर हैं तो वहां से उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारे ये स्मार्ट के साथ सीरीज ऑफ प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगली बार हम आपसे फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे एक नए मुद्दे पर जिसका नाम है कैसे बचें मनचलों से, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेट के जाल के बारे, अच्छा स्पर्श और कुछ बुरे स्पर्श के बारे, और कुछ रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और उनके बाद जो चुप्पी साध लेते हैं उसके बारे। तब तक आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। धन्यवाद।
0: हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हेलो फ्रेंड्स, कैसे

0: आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश, अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937770. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती है और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है. वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते.
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है. एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है. सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था.
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है, इतना पहले कभी नहीं था. सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से. इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर. और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं. आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी. आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.
2: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑन 12th June 2026 इन ऑनलाइन मोड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओनली 250 rupees फॉर मोर अपडेट कॉल 8851 02300 और 9785014998 smfe.conference@sharda.ac.in Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एंटीबायोटिक की कहानी।
1: तनु माँ के साथ छुट्टियों में अपने नाना जी के घर आई हुई है। वो नाना जी के साथ रोज सैर सपाटा मौज मस्ती करती है। बूढ़े नाना जी तनु के आने से जैसे तनु जितने छोटे ही हो गए हों। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही सुबह शाम रोगियों को देखते हैं। आज तनु नाना जी से कुछ रूठी हुई है।
2: नाना जी मैं घर वापस जा रही हूँ।
3: क्यों क्यों? अरे भाई अभी तो तुम्हारी बहुत सारी छुट्टियाँ बाकी हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्यों?
2: मैं आपसे नाराज हूँ।
3: ओ तो तनु अपने नाना से नाराज है। जरूर उसके नाना ने कोई अपराध किया होगा। अच्छा तनु जी आप अपने नाना का कसूर तो बता दीजिए।
2: कसूर?
3: हाँ
2: कुछ पता भी है? आजकल आप हंसना भूल गए हैं। मैं देख रही हूँ पिछले दो दिनों में आप एक बार भी नहीं हंसे और मुझे कहानी भी नहीं सुनाई।
3: अरे हाँ वो तनु ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल हुआ ये कि मेरे बचपन के एक दोस्त एकाएक बीमार हो गए थे, इसलिए मेरा मन कुछ परेशान सा था। अब ठीक है वो?
2: अब ठीक है? हाँ। तो फिर अब तो हंसिए।
3: अच्छा बाबा लो हंस दिया, अब तो माफ कर दो बिटिया।
2: तो फिर कोई बढ़िया सी कहानी सुनाइए। वैसे कहानी की शुरुआत तो मेरे पास है।
3: तुम्हारे पास कहानी की शुरुआत? अरे भाई वो कैसे?
2: वो ऐसे ये देखिए।
3: अरे हाँ अरे अरे बहुत अच्छे।
1: तनु ने नाना जी को दो कार्टून दिखाए। एक कार्टून में कई भयानक सूरत वाले राक्षस एक आदमी के शरीर में घुसते हुए दिखाए गए थे और दूसरे कार्टून में हरे और सफेद रंग का दवा वाला कैप्सूल बना था। कैप्सूल में से कई तलवारें बाहर निकली हुई थी और आदमी ने कैप्सूल को हाथ में लिया हुआ था और पता है उसका शीर्षक था, इसे खाते ही रोगाणुओं का सफाया हो जाएगा, सबसे प्रभावशाली एंटीबायोटिक। ये देखकर तनु और नाना जी दोनों हंसने लगे।
2: नाना जी,
3: बेटा जी,
2: शरीर में घुसे राक्षसों को ये तलवार वाला कैप्सूल कैसे मारता है ये तो बताइए।
3: तो बिटिया आज बात यहीं से शुरू करते हैं।
2: जी
3: दरअसल आदमी के शरीर में घुसने वाले ये राक्षस हैं बैक्टीरिया, यानी रोगाणु जो मनुष्य को बीमार करते हैं।
2: अच्छा।
3: और ये तलवारों वाला कैप्सूल?
2: जी।
3: ये वो एंटीबायोटिक दवा है जो शरीर में जाकर रोगाणुओं को नष्ट कर देती है।
2: हो।
3: हाँ
2: लगता है हाँ? ये कहानी मजेदार होगी।
3: मजेदार? अरे बहुत मजेदार है। अच्छा तो बेटा आज मैं एंटीबायोटिक के आविष्कार की ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। बेटी बात बहुत पुरानी है।
2: जी।
3: लंदन के सेंट मेरी अस्पताल की जीवाणु अनुसंधान शाला में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्लू बुखार के रोगाणुओं पर शोध कर रहे थे।
2: जी।
3: खास तौर से तैयार की गई तश्तरियों में घातक रोगाणुओं को पनपने के लिए न्यूट्रिएंट के बीच छोड़ दिया गया था।
2: जी।
3: उन विशेष तश्तरियों को पेट्री डिश कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
2: पेट्री डिश।
3: शाबाश बेटी। तो अपनी प्रयोगशाला का काम करके डॉक्टर फ्लेमिंग घर चले गए।

0: हुआ?
1: एक पेटी डिश में हवा बाहर से सूक्ष्म जीवाणुओं को ले आई। उन्हें बेटा तुम बिन बुलाए मेहमान भी कह सकती हो। तो बेटा वहाँ पहले से ही मौजूद रोगाणुओं के बीच वो भी अपनी संख्या बढ़ाने लगा।
0: तब तो दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई होगी।
1: अरे उस नए जीवाणु ने अपनी रक्षा के लिए एक द्रव छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, उस द्रव के प्रभाव से पैटी डिश में पहले से ही मौजूद रोगाणु समाप्त होने लगे।
0: अच्छा।
1: और उन मेहमान जीवाणु का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनकी संख्या बेरोक टोक बढ़ती गई।
0: फिर क्या हुआ?
1: हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बेटा दूसरे दिन डॉक्टर फ्लेमिंग प्रयोगशाला में आए और उन्होंने देखा पैटी डिश पर गोलाकार

0: हरा हरा सा कुछ फैला हुआ है।
1: अच्छा
0: हाँ, डॉक्टर फ्लेमिंग ने उसे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाकर देखा तो चकित रह गए।
1: अच्छा
0: हाँ, उन्होंने जिन रोगाणुओं को पनपने के लिए छोड़ा था ना
1: जी,
0: वो मनुष्य के लिए घातक थे।
1: ओ,
0: किंतु मेहमान सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा छोड़े गए एक्सट्रैक्ट यानी द्रव ने उन रोगाणुओं का सफाया कर दिया था।
1: अरे वाह। लेकिन वो हरा हरा क्या था नाना जी?
0: फफूंदी, फफूंदी थी बेटा।
1: अच्छा,
0: वैसी जैसी वो बासी डबल रोटी पर लग जाया करती है कि नहीं?
1: हाँ हाँ
0: हाँ। तो डॉक्टर फ्लेमिंग सोचने लगे, अगर उस घातक रोगाणु से पीड़ित व्यक्ति को ये द्रव दिया जा सके तो उसे मौत से बचाया जा सकेगा।
1: अच्छा
0: हाँ, उस फफूंदी का वैज्ञानिक नाम पेनिसिलियम नोटिटम है।
1: ओ,
0: क्या है?
1: पेनिसिलियम।
0: हाँ, शाबाश बेटा। इसीलिए डॉक्टर फ्लेमिंग ने उसे पेनिसिलिन नाम दिया।
1: ओ,
0: उन्होंने इस प्रयोग को प्रयोगशाला में कई कई बार दोहराया।
1: अच्छा,
0: हर बार फफूंदी से निकला द्रव रोगाणुओं को समाप्त करने में सफल रहा।
1: ये तो चमत्कार ही हो गया।
0: हाँ बेटा, हाँ, संयोग वश हुई इस खोज को चमत्कार कहा जा सकता है। पर अभी पूरी सफलता दूर थी बेटा।
1: इसके बाद भी दूर क्यों नाना जी?
0: बेटा, अभी सबसे जरूरी काम तो बाकी था, उस द्रव को अलग करना ताकि उसे रोगियों को दिया जा सके। लेकिन बेटा, डॉक्टर फ्लेमिंग उस रोगाणु नाशक द्रव को अलग करने में सफल नहीं हो सके।
1: तो फिर बात कैसे बनी?
0: बात बेटा कुछ ऐसे बनी कि डॉक्टर फ्लेमिंग ने अपनी खोज का विवरण प्रकाशित करा दिया।
1: अच्छा
0: हाँ, फिर अन्य वैज्ञानिक भी इस खोज में लग गए।
1: ओ
0: हाँ, और लगभग 10 साल बाद 2 वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लेमिंग का काम पूरा करने में सफल हुए।
1: ओ
0: हाँ, और पता है ये वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरे और डॉक्टर अर्नेस्ट चेन।
1: अच्छा, डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरे और डॉक्टर अर्नेस्ट चेन।
0: हाँ बेटा, फिर तो पेनिसिलिन का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया।
1: ओ,
0: और दूसरे महायुद्ध में पेनिसिलिन ने हजारों बीमारों के प्राणों की रक्षा की।
1: अच्छा
0: हाँ, और फिर इन तीनों यानी डॉक्टर फ्लेमिंग, डॉक्टर फ्लोरे और डॉक्टर चेन को इस मानव कल्याणकारी खोज के लिए सन 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: अच्छा
0: हाँ बेटी। लेकिन बेटा, पेनिसिलिन तो सब रोगाणुओं को नहीं मार सकती थी ना
1: जी,
0: इसलिए इसके बाद वैज्ञानिकों ने अनेक एंटीबायोटिक दवाएं खोज निकाली। जैसे टेट्रासाइक्लिन
1: जी,
0: स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, बस ऐसे ही कई दवाएं।
1: नाना जी।
0: बेटा,
1: इन्हें एंटीबायोटिक क्यों कहा जाता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तनु तूने। देख, एक जीवाणु द्वारा दूसरे जीवाणु को मारने की क्रिया को एंटीबायोसिस कहा जाता है।
1: ओ,
0: उसी से एंटीबायोटिक नाम पड़ा बेटा।
1: तब तो एंटीबायोटिक दवाइयों को रामबाण दवा कहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, ये दवाएं प्रभावशाली तो हैं, पर हर रोग के लिए नहीं।
1: अच्छा,
0: अब कई लोग सोचते हैं कि कोई भी रोग होने पर एंटीबायोटिक दवा ली जा सकती है।
1: ओ,
0: पर बेटा ये विचार गलत है। इन दवाओं का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, नहीं तो लाभ के बदले नुकसान भी हो सकता है।
1: ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फीस पक्की।
0: अच्छा शैतान। लेकिन तनु, तुमसे तो मैं दवा की नहीं, कहानी सुनाने की फीस लूंगा।
1: नाना जी, मैं इन कहानियों की फीस दूंगी, लेकिन तब
0: कब?
1: तब
0: कब?
1: जब मैं बड़ी होकर खुद डॉक्टर बनूंगी।
0: अरे वाह वाह वाह, शाबाश मेरी बच्ची, जीती रहे जीती रहे।
2: हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? हाँ तो भाई, इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है।
3: एंटीबायोटिक की कहानी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीतू झांजी, जैमिनी कुमार और मिताली, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: बिना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम हंसते खेलते बच्चे।
1: तनु छुट्टियों में माँ के साथ अपने नाना जी के पास आई हुई है। तनु के आने से उसके नाना जी तो एकदम छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए रोगियों को देखते हैं। तनु उनके साथ रोज सैर करने जाती है। आज भी वे सुबह सुबह सैर कर रहे हैं।
2: आहा, कैसी बढ़िया हवा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है इस हवा में।
3: नाना जी वहाँ पर जरा देखिए तो।
2: कहाँ, किधर, क्या देख रहा बेटा?
3: अरे उधर सामने।
2: आजकल तो जैसे मैं तनु की आंखों से ही देखने लगा हूँ।
3: वहाँ दीवार पर कुछ लिखा है।
2: तनु जरा पढ़कर तो देखो क्या लिखा।
3: नाना जी इस पर तो हंसते खेलते बच्चे का कितना सुंदर चित्र बना है।
2: अरे बेटा वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है।
3: और लिखा है बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए उन्हें समय पर टीके लगवाएं।
2: ठीक।
3: पोलियो, तपेदिक, खसरा जैसे रोगों से बचाएं।
2: बिल्कुल ठीक बेटा। और बेटा तनु तुम तो समझदार हो, समझ गई होगी कि ये बैनर किस लिए लगाया गया है।
3: जी हाँ नाना जी, हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को इन घातक रोगों से बचाने वाले टीके अवश्य लगवाएं। और और आज की कहानी क्यों ना आप इन रोगों से बचाने वाले टीकों के बारे में सुनाएं?
2: ठीक है पर पहले घर के अंदर तो चलो।
3: जी चलिए।
1: दोनों घर के अंदर जाते हैं। तब नाना जी कहते हैं,
2: हाँ तो तनु
3: जी,
2: आज मैं तुम्हें इन रोगों से बचाने वाले टीकों के आविष्कार की कहानी सुनाऊंगा।
3: सबसे पहले चेचक से बचाने वाले टीके का आविष्कार हुआ था।
2: और ये अच्छा काम किसने किया था?
3: इस आविष्कार को करने वाले थे एडवर्ड जेनर।
2: शाबाश तनु, शाबाश, एकदम सही जवाब। घातक रोग चेचक से बचाने वाले टीके या वैक्सीन का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था।
3: अरे नाना जी ये तो मुझे पता ही है।
2: पर ये पता तुम्हें, वो इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे, लेकिन इससे भी पहले भारत और चीन में इस रोग से बचाव के एक तरीके के बारे में लोग जानते थे।
3: अच्छा, वो कौन सा तरीका था नाना जी?
2: बेटे चेचक का भयानक रोग बहुत पुराने समय से मनुष्य को आतंकित करता आया था। लेकिन अब चेचक से बचाव करने वाली वैक्सीन के आविष्कार ने इसे जड़ से समाप्त कर दिया। एक विशेष बात ने लोगों का ध्यान खींचा था।
3: वो क्या नाना जी?
2: वो ये बेटा कि यदि एक बार किसी को चेचक का रोग हो जाता था और उसके प्राण बच जाते थे, तो फिर भविष्य में उसे फिर कभी चेचक नहीं होता था।
3: अच्छा,
2: वो रोग के प्रभाव से बचा रहता था।
3: यानी उसके अंदर चेचक से लड़ने की प्रतिरोधी शक्ति आ जाती थी।
2: हाँ बेटे, भारत और चीन के कई चिकित्सकों का ध्यान भी इस महत्वपूर्ण बात की ओर गया।
3: अच्छा।
2: और बेटे इसी के आधार पर उन्होंने चेचक से बचाव का तरीका खोज निकाला।
3: वो क्या तरीका था नाना जी?
2: चेचक होने पर रोगी के शरीर में दाने उभर आते थे।
3: अच्छा।
2: हाँ, इनमें एक प्रकार का द्रव भरा होता था।
3: जी।
2: जिन लोगों पर चेचक का हल्का प्रभाव होता, चिकित्सक उनके शरीर के दानों से द्रव निकाल लेते।
3: अच्छा।
2: और फिर उसे सुखाकर सुई द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा में पहुंचा दिया जाता था।
3: है?
2: हाँ
3: है?
2: बेटा, और इससे उस मनुष्य को चेचक तो होती लेकिन वो अपना भयानक रूप धारण नहीं करती थी।
3: अच्छा।
2: हाँ, तो बेटे समय के साथ चेचक से बचाव का ये उपाय एशिया के कई देशों में प्रचलित हो गया।
3: अच्छा।
2: और पता है
3: क्या,
2: सन 1718 में तुर्की में इंग्लैंड के राजदूत की पत्नी अपने देश इंग्लैंड जब तुर्की से वापस गई तो उन्होंने वहां इस एशियाई तरीके के बारे में बताया।
3: अच्छा।
2: और बेटा इस प्रकार ये जानकारी एशिया से बाहर कई देशों में पहुंच गई।
3: यानी चेचक से बचाव का उपाय ढूंढ लिया गया?
2: ना, ऐसा भी नहीं था बेटा।
3: तो फिर
2: कभी कभी इस तरीके से चेचक घातक रूप ले लेती थी।
3: अच्छा।
2: हाँ, और रोगी की हालत बिगड़ जाती थी। तो बेटा आगे चलकर डॉक्टर जेनर ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया।
3: जी।
2: डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय उन्होंने चेचक के बारे में जानकारी ली।
3: अच्छा।
2: और बेटे साथ ही चेचक से मिलते जुलते गौ शीतला यानी काउपॉक्स के बारे में भी उन्हें पता चला।
3: गौ शीतला यानी काउपॉक्स, ये क्या होता है नाना जी?
2: बेटा गौ शीतला एक ऐसा रोग है जो गाय के थनों को प्रभावित करता है।
3: अच्छा।
2: इस रोग से पीड़ित गाय का दूध निकालते समय ग्वाले इसके चंगुल में आ सकते हैं।
3: जी।
2: डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एडवर्ड जेनर ने गांव में ही एक दवाखाना खोल लिया।
3: अच्छा।
2: तब गौ शीतला के रोगी ग्वाले उनके पास इलाज के लिए आने लगे। और बेटा डॉक्टर जेनर ने पाया कि गौ शीतला यानी काउ पॉक्स और चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के बीच एक गहरा संबंध है।
3: जी।
2: जिसे गौ शीतला रोग हो जाता था उसे फिर चेचक नहीं होती थी।
3: ओ।
2: इस संबंध में अपने अनुभव डॉक्टर जेनर एक डायरी में नोट करते रहे।
3: बहुत खूब।
2: हाँ बेटा, और उन्होंने देखा जिसे गौ शीतला हो जाती थी उसे अगर चेचक बचाव द्रव का इंजेक्शन दिया जाता तब भी उस पर कोई बुरा असर नहीं होता था।
3: इसके बाद उन्होंने क्या किया नाना जी?
2: और बेटे इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया।
3: अच्छा।
2: गौ शीतला के दानों से द्रव निकाल कर उन्होंने 8 साल के एक बालक जेम्स फिब्स की बाह में इंजेक्ट कर दिया।
3: ओ।
2: और बेटे इस प्रयोग के लिए उन्होंने बच्चे के माँ बाप से पहले ही अनुमति ले ली थी।
3: इसके बाद जेम्स फिब्स का क्या हुआ नाना जी?
2: फिर बेटे जेम्स को गौ शीतला रोग हो गया।
3: ओ।
2: लेकिन वो जल्दी स्वस्थ भी हो गया।
3: अरे वाह।
2: इससे उनका विश्वास बढ़ा और अब डॉक्टर जेनर ने उस पर अपना अगला प्रयोग किया।
3: वो कैसा प्रयोग था नाना जी?
2: बेटे इस बार उन्होंने चेचक के रोगी के दानों से निकला द्रव जेम्स की बाह में इंजेक्शन से पहुंचा दिया।
3: फिर क्या हुआ?
2: बेटे इससे जेम्स को चेचक का प्राण लेवा रोग भी हो सकता था।
3: अच्छा।
2: लेकिन आश्चर्य उसे कुछ न हुआ।
3: अरे वाह।
2: और उसके लगभग 1 महीने बाद उन्होंने फिप्स पर फिर अपना प्रयोग दोहराया।
3: ओ।
2: और बेटा इस बार भी वो एकदम स्वस्थ रहा।
3: अरे वाह। लेकिन नाना जी डॉक्टर जेनर के मन में जेम्स फिप्स को लेकर चिंता तो अवश्य रही होगी।
2: बेटा बात ठीक है तुम्हारी, पर डॉक्टर जेनर को अपने प्रयोग की सफलता पर पूरा पूरा विश्वास था।
3: अच्छा।
2: और वो सफल हो भी गए थे।
3: तो इस तरह डॉक्टर जेनर ने चेचक से बचाव करने वाले टीके का आविष्कार कर ही लिया।
2: नहीं नहीं बेटा ना, एकदम ऐसा नहीं हुआ।
3: तो फिर
1: नाना जी ने तनु को बताया कि डॉक्टर जेनर ने अपने प्रयोग की सफलता का पूरा विवरण प्रकाशित करवाया तो सब चकित रह गए। अनेक ने उनकी प्रशंसा की तो कई ने उनका विरोध भी किया। नए प्रयोगों के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है।
3: लेकिन बाद में तो लोगों को डॉक्टर जेनर के महान आविष्कार का महत्व मानना ही पड़ा।

0: तो मानना ही था बेटा। और बेटे इस तरह आविष्कार हुआ चेचक से बचाव करने वाले टीके का।
1: अच्छा,
0: समझ गई ना?
1: जी।
0: और डॉक्टर जेनर ने इसे वैक्सीन नाम दिया।
1: अच्छा, वैक्सीन?
0: हाँ बेटा, और इसका कारण भी रोचक था।
1: अरे भला इसमें रोचकता की क्या बात थी?
0: सुनो तो सही बेटा, सुनो। लैटिन भाषा का एक शब्द है वैका, उसका अर्थ है गाय। गौ शीतला के दानों के द्रव से बने होने के कारण ही इस प्रकार के टीके को ये नाम मिला।
1: ठीक है, लेकिन नाना जी, हमारे घर के बाहर लगी बैनर पर तो कई बीमारियों के नाम लिखे हैं, उनके लिए टीकों का आविष्कार कब हुआ?
0: देखो बेटा, 18वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
1: वो कौन थे नाना जी?
0: बेटे वो थे फ्रांस के रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर तथा जर्मनी के डॉक्टर रॉबर्ट कॉक।
1: अच्छा।
0: डॉक्टर कॉक ने प्रयोगों से पता लगाया कि कुछ घातक रोग कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होते हैं।
1: जी।
0: बेटे तनु
1: जी,
0: इस खोज के लिए डॉक्टर रॉबर्ट कॉक को उनके साथी पॉल इनरिक और उनके छात्र एमिल फॉन बेरिंग के साथ 1909 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
1: और उसके बाद क्या हुआ?
0: और उसके बाद बेटा 1955 में जोन्स साक ने एक अलग तरीके की खाने वाली वैक्सीन का आविष्कार किया।
1: अच्छा, वही खाने वाली पोलियो की बूंदें?
0: हाँ बेटा, पोलियो की बीमारी की रोकथाम में विश्व भर से इसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। और बेटे ऐसे ही सफल प्रयासों से BCG वैक्सीन तपेदिक के लिए बनी।
1: अच्छा।
0: और अब तो एक साथ तीन तीन बीमारियों के लिए एक वैक्सीन से काम चल जाता है।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा।
1: वो कौन सी वैक्सीन है नाना जी?
0: देखो बेटा, DPT वैक्सीन डिप्थीरिया यानी गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस तीन बीमारियों के लिए है।
1: जी।
0: और बेटे इसी प्रकार MMR वैक्सीन मिजल्स यानी खसरा, मम्स और रूबेला तीन बीमारियों से बचाने के लिए है।
1: जी।
0: अब तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए भी वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं बेटे।
1: अच्छा।
0: अरे क्या बात है बेटे, ये बात सुनकर तुम जैसे किसी गहरे सोच में डूब गई हो।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैं सोच रही थी क्या मैं भी आपकी तरह एक दिन डॉक्टर बन सकूंगी।
0: बन सकूंगी? तनु तुम तो अपने नाना से भी बड़ी डॉक्टर बनोगी, बड़ी अच्छी। देख लेना बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है।
1: सच नाना जी?
0: एकदम।
2: हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितने ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है।
3: हंसते खेलते बच्चे, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जैमिनी कुमार, सतीश कक्कड़, नीतू झांजी और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
2: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
1: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी, मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मानसून में बारिश भी नहीं होती। हर मानसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी, मौसम मौसम लवली मौसम।

0: सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर, ना पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई किसके लिए आज मौसम लवली लवली है, अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। तो अब चाय।
0: अभी लाती हूँ चाय।
2: हाँ।
1: ओ, तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं।
2: अरे भाई मौसम ही ऐसा है बेटा।
1: जी, लवली लवली।
3: अरे मानव, आज तो मानव बड़ा खुश है। हाँ। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, पर मूड नहीं बन रहा था, और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
0: अरे वाह, कीजिए आपकी चाय।
2: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
0: हाय आप।
2: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा, कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
2: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला। पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
4: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
2: क्यों बती रहे हो भाई। वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो, जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
3: वो कैसे?
2: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
0: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा, उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तब वहाँ वर्षा हो रही थी।
2: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
3: अच्छा।
2: पर हुमायूं वहीं डेरा जमाए रहा, और तब शेरशाह अपनी मान से निकला और उसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। अरे सब जानते हैं कि वो गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई।
1: पापा, मैंने सुना है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से 2500 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
2: हाँ बेटा।
1: कुछ विशेषज्ञों का विचार है, उस रात अगर वर्षा होती या तेज हवाएं चलती तो जहरीली गैस या तो पानी में घुल जाती या हवा उसे दूर ले जाती, जिससे उसके प्रभाव अधिक क्षेत्र पर तो होते परंतु इतने घातक नहीं होते।
4: और ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा।
2: हाँ मानव, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
3: अच्छा।
2: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
4: पापा, आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
0: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
2: एक मिनट, पहले पूछ तो लो मुझसे।
4: बोलो ना पापा।
2: तो चलो ना भाई।
5: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
2: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भैया, तुमने सब कुछ कमाल कर दिया भैया।
4: नमस्ते
5: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
2: बच्चों, ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
5: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों, देखो यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
2: बड़ी सुंदर है।
5: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
3: मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
2: ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए हो।
6: वो तो मैंने हजम कर दिए
2: रास्ते में।
1: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यही फेंक दी।
0: मानव कब अपने आप को बदलोगे?
6: मम्मी
0: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
5: अरे भाभी जी मानव को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा, वहाँ सामने दो कूड़ेदान रखे हैं।
3: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा। जा
7: मानव मैं आ गया। अरे मानव आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
6: अरे गौरव तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
7: हाँ हाँ विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
6: गौरव देखो ये मानव अपनी आदतें बदलता ही नहीं है।
7: सृष्टि दीदी मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
3: कभी कभी
7: पर मानव मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
3: गौरव कुछ भी कहो पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
7: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
6: सच गौरव पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
5: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
6: नाश्ता?
5: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
2: वैसे अनुराग यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। ओ, कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
5: हाँ भाई हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
3: डॉक्टर अंकल मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
5: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
2: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
5: हाँ भाई मैं भी एक शौकिया मौसम वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
6: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
5: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
6: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
0: बस बस बस मानव करने लगा परेशान तू अपने अंकल को।
5: अरे नहीं नहीं भाभी मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
1: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
3: हाँ सृष्टि बिल्कुल ठीक होगा। मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
5: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में 3 मुख्य कारक हैं।
6: कौन कौन से?
5: सूर्य, हवा और पानी।
6: अंकल कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
5: लवली लवली यानी?
6: देखो अंकल आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों हुआ ना मौसम लवली लवली?
2: बेटा बेटा कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता, ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाओ साथ में
6: पापा।
7: हाँ अंकल तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है तितली के अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने से ध्रुवों पर हिमखंड गिरने लगते हैं।
5: बेटे इस उदाहरण से वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम के निर्धारण की प्रक्रिया कितनी जटिल है, एक छोटी सी घटना कालांतर में किस तरह मौसम को बड़े रूप में प्रभावित करेगी कहा नहीं जा सकता।
3: यानी अभी मौसम के बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए।
5: कुछ ऐसा ही समझो।
6: पर अंकल पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। मौसम बनता और बिगड़ता कैसे है?
5: अरे बेटे, पृथ्वी पर मौसम परिणाम है तापमानों के अंतर का।
6: तापमान में अंतर?
5: हाँ बच्चों, और तापमान में अंतर इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को सूर्य से प्रति यूनिट कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है।
1: तब तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
5: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
3: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं।
5: हाँ।
3: पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
1: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
6: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
5: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है, समुद्र में नहीं।
2: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
6: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली। अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
5: सूर्य प्रकाश
3: बहुत बढ़िया मानो, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
5: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
3: अच्छा,
7: तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेड विंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
5: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
6: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
2: आ गया। अच्छा जाओ, अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ तैयारी कराओ, जाओ चलो।
5: सचमुच मजा आ गया खाने का,
6: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
5: क्यों?
7: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
5: भाई ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
6: कौन कौन सी अंकल?
5: भाई ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
7: कहीं आप ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे?
5: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
6: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
5: हाँ।
6: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
3: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
5: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
7: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
5: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
6: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
5: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है और मौसम नम बना रहता है।
7: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
1: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है,
5: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं, और ये पवन यानी कि हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवने और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना?
7: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
5: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी के अनुसार मौसम ठंडा गर्म शुष्क या नम होगा।
2: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछुआ।
0: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं, और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं।
1: तब तो अंकल हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहाँ के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
5: बिल्कुल,
6: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
3: अरे भाई मानव, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
1: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
5: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहां उच्च दाब है वहां से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
2: परंतु ऐसा होता नहीं है।
6: क्यों?
2: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है, जिससे हवाएं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी उसकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है।
1: तो क्या वे गर्म हवाएं ध्रुवों तक नहीं पहुँचती?
5: पहुँची तो है बेटे, परंतु बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद।
6: जटिल प्रक्रिया मतलब?
2: देखो भाई, भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के पास कुछ हवा नीचे उतर जाती है। यहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, परंतु इसकी सारी नमी पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इन कम दबाव के क्षेत्रों में मौसम तो शांत होता है परंतु वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होती।
6: शायद तभी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
3: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
1: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है, उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
3: बिल्कुल ठीक है। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
5: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
1: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
2: नहीं बेटा नहीं, भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं, और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
3: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
1: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
5: व्यापार न सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
1: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं खाने में तेज है।
6: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई है।
5: अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
3: अंकल, सेब तो हम भी खाएंगे।
5: अच्छा बच्चों, तुम सब सेब लो, ये लो, ये लो।
2: मैं बच गया भाई।
1: अंकल, मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम 50-40 सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
3: सृष्टि, मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती 40, भयानक 50 और चीखते 60 तो नहीं पढ़े थे?
1: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
6: लेकिन भैया, ये कैसे विचित्र नाम है?
3: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है, तो इसे गरजती 40 या रोरिंग 40 कहते हैं।
7: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
3: पापा आप ही बता दो।
2: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है तो इसे भयानक 50, फ्यूरियस 50, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते 60, स्क्रीमिंग 60 कहा जाता है।
1: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
6: अगर आपने जल और थल समीर को स्थायी पवन बताया था ना?
5: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्मा धारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
7: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है
1: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
5: हाँ बेटी, ऐसा ही होता है।
6: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
5: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती है।
1: आरोही और अवरोही हवाएं?
4: हाँ।
6: विवेक भैया, कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
3: मानव, तू फिर से घबराने लगा।
6: बताओ ना भैया।
3: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय पवन है।
5: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है। इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
1: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
2: और रात में पर्वत की चोटियाँ घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।

0: उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है। अच्छा,
1: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या जेट विमान भी उड़ाए।
0: अंकल, जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
2: बच्चों, धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
0: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
3: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में ही होती है।
4: हाँ, लेकिन बेटा ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
1: अच्छा, तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मॉनसून का संकेत माना जाता है।
4: बिल्कुल ठीक, मॉनसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
3: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मॉनसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
4: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मॉनसून प्रभावित होता है।
0: लेकिन ये मॉनसून समय का पक्का नहीं है। हा? कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
1: अरे मानव, मॉनसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
0: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं, तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। परीक्षाएं? भाई मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो, बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अरे मानव, ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर, बिस्किट है क्या? अरे दीदी, बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है, ताकि बाहर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
4: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
2: भाई ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
4: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
2: भाई कुछ भी कहो, पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
0: आज की पिकनिक बड़ी मजेदार रही।
5: भाई साहब, आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षा प्रद बनाया है।
0: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

0: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
0: शारदा Sharda School of Media, Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hurry up, where are you? The wall is here at Sharda University.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सोची लूंगी पो।
1: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे,
1: सुनो शारदा।
2: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। Sharda School of Media, Film and Entertainment, Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hurry up, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
6: जी
5: प्लीज कैरी ऑन।
6: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
5: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
6: जी सर बिल्कुल करेक्ट।
5: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रूपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: एरी सुशीला तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है भूखो है का?
2: हाँ भूख ही लग रही होएगी
1: तो याए सेहत दे दे।
2: हाँ तू 2 मिनट बैठ में लेके आई।
3: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे जासु बालक संक्रमण एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे। खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा होवे। तो इसलिए अपने बालक स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
0: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
4: मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम।
5: धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा।
6: इशिता, आई एम सॉरी, लेकिन भाई से बढ़के कुछ नहीं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
4: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
1: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: बसंती।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
7: She likes to drop it low, man.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM। Sharda School of Media, Film and Entertainment, Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupee. For more update, call 88511-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hurry up, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं

0: ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
6: नमस्ते दीदी।
5: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है, तो बोली कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
7: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं तो उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और भी विभाग जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागीय जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग न पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों की ना जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.